ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सदितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः ॐ स्वाहा ॐ माहा ॐ जनः